मेरी बहना का घर रहे, तारों से सजी रहे किस्मत उसकी, तारों से सजी रहे किस्मत उसकी, वो खुश रहे जिस घर रहे जिस शहर रहे, ऐ खुदा मेरी दुआओं में इतना असर रहे। खरच एक भाऊ आपल्या बहिणीसाठी आणखीन काय मागणार, कारण त्याला आपली बहीण हजारात एक अशीच वाटत असते। तो म्हणतो, हे माझं नाहीये तर फूलों का तारों का सबका कहना है, क्या कहना है, आइए सुनते हैं।

असर रहे, फूलों से खिला खिला मेरी बहना का घर रहे, तारों से सजी रहे किस्मत उसकी, तारों से सजी रहे किस्मत उसकी, वो खुश रहे जिस घर रहे जिस शहर रहे, ऐ खुदा मेरी दुआओं में इतना असर रहे। खरच एक भाऊ आपल्या बहिणीसाठी आणखीन काय मागणार, कारण त्याला आपली बहीण हजारात एक अशीच वाटत असते। तो म्हणतो, हे माझं नाहीये तर फूलों का तारों का सबका कहना है, क्या कहना है, आइए सुनते हैं।

0: सर्जन।
1: हाँ।
0: वो यहीं पर।
1: यहीं है?
0: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो, बस समझ जाओ।